Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: Ilombwe FM 89.6 MHz.
1: अब रङ थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो सेम पराब लबत देन कदर लब गुङला भिन्नता जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुला कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ तथा जीवनलाई क्षण गरेर श्रृङ्खलालाई अङ्क 38 रङले स्वागत मुलाङ अभियोग तामाङ रङला लुइरि चुरङमा मिगदी मुला जोसे रङ र सेम पराब लमुला तासै थेनी गदी से रङ याकरगी मिला रुबी हाला मुसुला विवत ताम्द महत्व अपिन मुला हालैरी रङला लानन दुई देन तिङ लगानी लासिला कि अलासिला विवा निर्णय लामा थे मिगदी दा दम्सुगो जोसे रङ द कदर लमुला थे मिगदी से जोसे रङला लक्ष्य गदे दा आत्मिक रूपी समर्थन लबरी समर्थन लमुला छन् दिवा मुला थे मिगदे जोसे रङला महत्वकांक्षा दा वसे मुला थेन्दे प्रोत्साहन लमुला थेनिगदेसे रङ नङरी गे लजीवल परमेश्वर आत्मा मृङ्गुला थेन्दे थेनिगदेसे परमेश्वर से रङदा पिन्सुब बल बाता सम्मान लमुला हिब्रु 10:24 यङसे गिक सेन गिक द माया लबदेन जब गे लवला लागरी आठ थब खामला ताम जे लाई रङ कदर लदोबा मि तिगहिनबा जोसे रङ निरन्तर प्रोत्साहन लबरी मैजीबा मुला जब रङ डिप्रेसन ल अवस्थारी ब्लुम्बा थेनिगदेसे रङला लागरी प्रार्थना लबरी रङ देन परमेश्वर वचन साझा लबरी रङला लागरी हाइमा दमन हाजिर तला रङला देन ख्रिस्ट शरीरला लागरी रङ कति महत्वपूर्ण मुसिला विषय ताम घरी घरी दन्न लाला लानन निगदे मुला जोसे रङ द चुर सोचव लबारी लगब लमुला कि थेनिगदेसे रङदा मूल्यवान मनमुला तसै नङरी नङ्रिन थेनिगदेसे रङ्द सम्मान अलामुला रङ थे मिगदेसे हरङलसी वसे मुला थेनिगदेसे रङ्दा विव प्रशंसा शब्द गदेरी लानन ध्यान अपिन्सुगो बरु थेनिगदेला गे गदे सिगो देन चु तम अवलोकन लसुगो कि थेनिगदेसे रङ्दा विव प्रशंसा शब्द गरे थेनिगदेसे रङ देन लब व्यवहार देन मेल सबाला कि आज मुला याकर्की विवाह मुलागी शब्द कदे भन्दा गेसी गेन स्वरी पङमुला हलाइसे रङदा रङला सुइसे पङमरी लानन सजिलो मुला तसै थेनिगदेसे रङदा हरङब मूल्यवान मनमुला विवतम थेनिगदेसे हरङ रङप्रति लब व्यवहार ज्ञान निर्धारित तमुला जब रङदा थेनिगदेला रोला आवश्यकता तमुला थेनिगदेसे लब निर्णय गदेला ध्यानसे सिगो तिग थेनी गदे रङ्द आवश्यक तब रङ्ल बहुमूल्य दुई ग्लाबरी तयार मुला तिग थेनी गरी मुलानी दुई रि नोन रङ्द रो लबरी तयार तामुला वा तिग रङ्द सुख तमा जेखेन थेनी गदे रङ्देन लबरी इच्छुक मुसुला थेन जब रङ्द रो तोला तब थेनी गदे आतामुला थेनी गदे माबा मुला रङ्द साचिन महत्वपूर्ण अतिम्ब गदे नोन रङ्ला लुइरी उत्ते बेला जेखेन माङमुला जब थेनी गदेदा तिगै तोला थेन्दे थेनी गदे मनमुला कि रङसे थेनी गदेदा आवश्यक तब रो पिनबरी हम्स्युला जब थेनी गदे निरन्तर चुराङलासी व्यवहार लामुला चु याकर्की प्रदर्शन हिनमा कि थेनी गदे जेखेन राङलन स्वार्थी इच्छा गदेला बारेरी चिन्तित मुला फिलिपी 2:3 ओछे राङला जे ज्ञान च्यासी गे लबदेन रङ जे ग्रेन बिसी थमानगो तर रङ भन्दा स्यन्दो द ग्रेन मन्सी सोझो तसी च्यु रङ द साचिन मूल्यवान मनमगदे थे हिनबा जो रङ ग्याम तिगै नोन सेम लबला दुईरी हनङ दोमुला थेनी गदे रङला बारी सोधपुछ लमुला तिग्दौसिन थेनी गदे साचिन रङ हरङमा मुसुला बिसी वास्त लमुला थेनी गदे रङदा रो लबरी उत्सुक तमुला रङसे दत्ते थेनिगदेला लागरी लसुबा गेला लागरी थेनिगदे साचो कदर व्यक्त लबरी योनन तयार लमुला जोसे रङदा साचिन महत्वपूर्ण पिनमुला थेनिगदेसे रङ देन दुई बिताप बारी रङला लुइदा प्राथमिकता पिनला जोसे रङदा महत्वपूर्ण अपिनमुला थेनिगदेसे रङदा निरन्तर रङ लानन व्यस्त मुर्वा बिसी बाहना पिनमुला जब हालैसे बिमुला कि ग व्यस्त मुला थेनिगदेसे वास्तविक तिगा बिमुला विषम थेनिगजेला लुइदी स्यान्दो तिगै रङ भन्दा महत्वपूर्ण मुला रङला दुई लान महत्वपूर्ण मुला विशेष लसी जब रङ रङला दुई परमेश्वरला मिगदेला सेवरे प्रयोग लवन मुस्युला सैतान थेनिगदे ग्लाग्याम रङला दुई योना लबरी थपिन्सुग दयासेला सम्बन्ध गरिग्याम अलग तस्युग थेनी थेनिगदे थेमिगदे थेन बदलाव लस्युगो जो राङ्ग्याम किनबाला सट्टा राङ्ला सेवा लाभ्री सेमुला एफिसी पाँच अध्याय एक्काइस एनिगदे श्री ख्रिस्त मान लबसे लमा रङ रङ नङरी निक्सेन निग्दा तबरी थियो ईश्वरीय सम्बन्ध तब तमुला जब रङ निसे एक अर्कला सेवा लसुला आमेन रङ्गिला जीवन री परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष पिन्छु गए
2: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्प्राक माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98-86-53-339 हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङ्गी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
3: टाइम चेक इज 7 PM
4: अहिले साँझको 7 बजेको छ।